0: जो न मचले वो तबीयत क्या।
1: तबीयत तबीयत सब रखी रह जाती है जब पैसा नहीं होता।
2: पैसा पैसा पैसा, अरे पैसा।

0: और भेड़ो, देश में संकट है, आप सबसे विनती है कि कौम के लिए चंदा दीजिए, जेबे झाड़ कर छप्पर फाड़ कर, कहीं गड़ा हो तो उसे उखाड़ कर, अब मैं तो थक गया गला फाड़ कर। तो सबसे पहले मैं अपनी पत्नी का असली हीरो का हार अर्पण करता हूँ।
1: असली नहीं है,
0: पता है नकली है,

रोज नहीं फिर विन से लिपटू प्यार के गाने गाऊं, तू जल भुनकर माथा पीटे और मैं नोट दिखाऊं, और मैं नोट दिखाऊं। इसीलिए तो कहता हूं कि पैसा

0: मैं तुम्हें घुमाऊंगा, दुनिया की सैर कराऊंगा। हंसो गाओ गाओ, कुछ सुनो कुछ सुनाओ।
1: अंकल हम सुनाए?
0: हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ।
1: जय

0: अरे तू क्यों चुप है?
1: अंकल अभी वो नया है बेचारा शर्माता है।
0: कौन है रे तू?
2: मैं रामपुर का लक्ष्मण हूँ।
0: अरे वाह वाह वाह, मैं भी वहीं का हूँ। फिर हो गई ना तेरी मेरी दोस्ती?
1: हो गई।
0: तो फिर दे ताली।

0: गुलजार नार सिंगार करुण खूप नटली अहो गुलजार नार सिंगार करुण खूप नटली
1: चले चमक

0: everybody.
1: Hi!
2: Smashing! Groovy! Fab!
3: Terrific! Fantastic! What a beaut!
4: ये तो टाइम टाइम की बात है जॉनी, टाइम टाइम की बात।

0: शान और शौकत, क्या तुम मेरी बेटी को दे सकते हो?
1: ये सब कुछ नहीं है मेरे पास जी, लेकिन दिल की दौलत जरूर है मेरे पास। आपकी बेटी को दिल में बसा कर रखूंगा।
2: ये चाटा आपने मुझे नहीं, मेरे गरीबी को मारा है।
0: निकल जाओ इस घर से।
3: ये अकेला नहीं, मैं भी इसके साथ जाऊंगी।
0: रुक जाओ जूली, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ जूली, वरना भूखी मर जाओगी इस लड़के के साथ। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

0: हेलो।
1: हेलो मैडम, हाँ
0: बोला।
1: रेडियो है
0: हो रेडी विश्वास।
1: हाँ मैडम, एक गाना चाहिए बोलने के लिए। ललिता के बारे में, ललिता बोलती हूँ अपने संभाजी नगर से।
2: हेलो,
1: वो गाना चाहिए, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ। मैडम
2: ठीक है मैम।
1: नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते
2: नमस्ते।

0: 누구야? 박어!
1: 아오 बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?
0: जा मुन्ना।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।

0: डाल डाल वो पान पान मैं पसीना वो दाल दाल मैं सुर में वो ताल में ये जंगल पाताल में बचाओ बचाओ अरे भागो रे भागो अरे भाग रे
1: खुदा की कसम

0: अरे गोद में बैठा लो बच्चे का क्या काम है, गोद में बैठा लो बच्चे का क्या।
1: पण मित्रांनो, हाच बॅरिटोन केवढा भावुक होतो जेव्हा वो नीला आसमान सो जाता है, स्वप्नांच्या चंदेरी जगात घेऊन जाणारा हा रुपेरी आवाज, शब्दांना हळुवार गोंजारणारा हा खर्ज, क्या बात है।

सोचने लगे हो? देखो कितनी खूबसूरत रात है. Isn't it lovely? Isn't it romantic? और मैं भी इस रात की तरह हूँ, मस्ती भरी. मुझ में खो जाओ, पास आओ,

0: हेलो।
1: हेलो मैडम,
0: हाँ बोला।
1: रेडियो है?
0: हो रेडी विश्वास?
1: हाँ मैडम, एक गाना चाहिए बोलने के था मुझे। ललिता के बारे में, ललिता बोलती हूँ अपने संभाजी नगर से।
0: हेलो,
1: वो गाना चाहिए था, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ। मैडम
2: ठीक है मैम।
1: नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते
2: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो हेलो।
0: हाँ नमस्कार मैडम।
1: हाँ बोला।
0: हाँ मैं राजे डिंगोरे बोलते पुणा शेटकोशी तो हम लोग।
1: हाँ बोला।
0: हाँ की फार्मासी है। पिक्चर का नाम है प्रतिज्ञा धर्मेंद्राचा। बोल है मोरनी रे मोरनी माय जंगल की मोरनी।
1: बर
0: धन्यवाद।
1: चालेल सर। थँक्यू।
0: धन्यवाद।

मजा लूटा ना करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की। इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक,

0: दिलीप से बाल, संजय सा, छेल छबीला, शशि सा शर्मीला और मनोज सा भोला भाला, शम्मी सा रंगीला, शौक हो वो राजिंदर जैसा और सुनील सा बांका, जिसमें इतने गुण हो सकेरी जोड़ उसी से टांका। ना बंगला ना मोटर मांगू, ना कपड़ा ना गहना, ऐसा शौहर मिल जाए तो किस्मत का क्या कहना।
1: कमर हेलन की, आंखें पद्मनी की, गाल विन्नी के, अदा आशा की, शोखी साधना की, बाल सिन्नी के, नूतन का कद, शर्मीला की अंगड़ाई, बबीता की जवानी और नंदा की सी रहनाई, वहीदा का तबस्सुम और लीना की सी मस्ती, अदा में नाद में नखरे में हेमा मालिनी जैसी, नजर जिसका नजारा देखकर सरशार हो जाए, अगर बीवी मिले ऐसी तो बेड़ा पार हो जाए।